radio station, Radio Olive 106.3 FM.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Main hoon Ali Kapoor. Radio Olive,
3: you're with us. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm number one.
5: 106.3 Radio Olive,
6: Radio Olive, your happiness frequency.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन। रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
4: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है.
3: Cool Song.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
5: अरमान मलिक
4: 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
7: Radio Olive, I'm number one.
8: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: कतर ना हमेशा आर्ट में, साइंस में, हर चीज में मतलब स्पॉटलाइट लेकर ही रहता है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस आर्ट एग्जीबिशन में से एक इस बार कतर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसमें काफी पावरफुल होने वाला है, क्योंकि कतर म्यूजियम के अंदर एक यू नो एग्जीबिशन लॉन्च हुई है जिसका नाम है अ गैदरिंग ऑफ रिमार्केबल पीपल। और ये सिर्फ पेंटिंग या इंस्टॉलेशन का इवेंट नहीं है, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन है कल्चर, आइडेंटिटी, ह्यूमैनिटी इसके बारे में। और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कतर पवेलियन का डिज़ाइन इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल कतरी गैदरिंग स्पेसेस, और क्या तो स्ट्रक्चर है, पैटर्न्स है, मतलब मॉडर्न आर्ट और हेरिटेज का ब्यूटीफुल ब्लाइंड। मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों को मिलाकर जो ब्लेंड है ना मॉडर्न और हेरिटेज का, वो वहाँ पर दिखाया गया है। और एग्जीबिशन में सिर्फ विजुअल्स नहीं है, फिल्म्स हैं, लाइव म्यूजिक है, मिडल ईस्टर्न फूड एक्सपीरियंस है, सब कुछ इंक्लूडेड है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ है ही तो जाना तो बनेगा ही, मतलब कल्चर कनेक्ट जो है वो लेकर तो आना पड़ेगा। सो वी विल से कि कतर का ग्लोबल क्रिएटिव आइडेंटिटी जो है वो बिल्ड करना काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है। एंड आई विल से कि कब कहाँ कैसे जाना है सब बताती हूँ आपको। सुन रहे रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool song.

टुडे इज 9th of May और आज मैं आपको बताती हूँ कि फुटबॉल फैंस जो हैं वो फाइनल सिर्फ टीम का प्रेशर नहीं होता, बेसिकली रेफरी का भी बहुत होता है. और कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने आज ऑफिशियली जो नाम है वो भी अनाउंस कर दिया. 2026 अमीर कप फाइनल जो है वो कौन यू नो ऑफिशिएट करेंगे. साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताती हूँ कि अमीर कप फाइनल जैसे मैचेस में रेफरी बनना इटसेल्फ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि क्राउड का प्रेशर, यहाँ पर डिसीजंस लेना, इमोशनल इंटेंसिटी सब नेक्स्ट लेवल होगा. और इस बार फाइनल भी काफी एक्साइटिंग है क्योंकि आमने सामने है अल साद वर्सेस अल गराफा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. मतलब इतनी सारी चीजें होने वाली हैं, फैन की एनर्जी, ट्रॉफी का प्रेशर, और यहां पर इतना ज्यादा प्रेशर होने वाला है. और इंटरेस्टिंगली आजकल फुटबॉल ना सिर्फ फील्ड पर नहीं होता, सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो स्क्रीन पर देख रहा होता है उसके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट होगा. कभी कभी क्राउड गोल सेलिब्रेट करते हैं पर VAR चेक स्टार्ट करते हैं. सो आई विल से कि फुटबॉल में इमोशंस फास्ट होते हैं और टेक्नोलॉजी उसे स्लो करती है. सो आप मुझे बताओ कि आपको फुटबॉल स्क्रीन पर देखना पसंद है या ग्राउंड में. बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि मुस्कान को सिर्फ और सिर्फ लाइफ मस्त है. मैं स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.

0: सो भाई दोहा जो है वो ऑफिशियली स्पोर्ट्स कैपिटल मोड में एंटर कर रहा है. जीसीसी गेम्स दोहा 2026 का शेड्यूल ऑफिशियली अप्रूव हो गया है और ऑनेस्टली लाइनअप काफी मैसिव है. 17 स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग, पैडल, कराटे, वॉलीबॉल और कॉम्पिटिशन होंगे वर्ल्ड क्लास वेन्यूज में, जैसे कि स्पायर डोम में, लसेल का शूटिंग रेंज और हमद का जो इक्वेस्टिक सेंटर है उसमें. सो कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, इवेंट रेडी भी है. और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जीसीसी गेम्स सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं, पूरी यूनिटी का सिंबल होता है. 6 गल्फ कंट्रीज होंगी, थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स होंगे और स्पोर्ट्स लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है पर इमोशंस सबके सेम होंगे. यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. और कतर का हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है इस टूर्नामेंट में. सो आई विल से कि इसके बारे में और भी बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ी देर में बात करते हैं मैचेस की. यस्टरडे वाज सच अ ब्यूटीफुल मैच. मतलब मैंने उस मैच को बीच बीच में देखा क्योंकि मैं तो अपने OTT पे ग्लोरी देखने में बिजी थी. सो उसके बारे में बात करूंगी और बात करूंगी कल के मैच के बारे में कि मुझे उस पूरे मैच में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा. यस्टरडे वॉज कोलकाता वर्सेज दिल्ली, जिसमें कोलकाता ने मैच जीत लिया. और आज के मैच की भी बात करूंगी, विच इज राजस्थान वर्सेज गुजरात. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: Song of the Hour. Yeah, guys.

सो आज या तो राजस्थान विनर बनेगा या फिर गुजरात ये मैच जीतेगा, दोनों में से एक होगा। पर कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता लगातार चौथी बार जीता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो अगर मैं सीजन की बात करूं तो टीम जो है कल दिल्ली को 8 विकेट से हरा चुकी है और इस बार दिल्ली प्ले ऑफ रेस में लगभग बाहर हो गई है। और कलकत्ता की अगर मैं बात करूं यानी कि कोलकाता, तो उनकी उम्मीदें अभी भी कायम है। सो बेसिकली ये जो मैच था कल हुआ जिसमें 20 ओवर में 8 विकेट पर 142 रन बनाए दिल्ली ने और कोलकाता ने 143 रन का टारगेट जो था वो सिर्फ 14 ओवर 2 बॉल में कंप्लीट कर दिया। सो ओपनर फिन एलन ने सीधे छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई और उन्होंने अपना जो शतक है वो भी पूरा किया। उन्होंने 47 बॉल्स पर 5 चौके और 10 छक्के के साथ नॉट आउट होकर 100 रन बनाए एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल पारी। मतलब क्या तो मजा आया उनको देखने में। कैमरन ग्रीन 33 रन बनाकर नॉट आउट हुए उन्हीं की पार्टनरशिप में। पर इस मैच में और भी बहुत सारी चीजें थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। आप मुझे बताओ विच वॉज योर फेवरेट पार्ट। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूँ जैकी श्रॉफ.
3: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3 जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: सो कल के मैच में कई सारे रिकॉर्ड्स बने हैं. सो केएल राहुल ने दिल्ली के लिए पूरे 1000 रन पूरे किए हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो विकेट कीपर बैटर केएल राहुल ने दिल्ली के लिए कल 1000 रन पूरे कर लिए हैं. सो इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में 3 टीम्स में 1000 रन बनाने वाले पहले बैटर जो है वो केएल राहुल हैं. मैच में से 14 बॉल्स में 23 रन बनाकर वो आउट हो गए थे. अब अगर केएल राहुल के 500 आईपीएल जो चुके हैं उनकी बात करूं तो जो कोलकाता है उसके खिलाफ 4 चौके लगाए और फिर टूर्नामेंट में 500 चौके पूरे किए. अब यहां पर कल कई सारे रिकॉर्ड्स तो बने हैं लेकिन आज क्या होने वाला है मैच में. आज है राजस्थान वर्सेस गुजरात. आप मुझे बताओ आपकी फेवरेट टीम कौन है और फेवरेट प्लेयर कौन है. 3311063 पर यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: सो ये जो आज मैं किताब की बात करने वाली हूँ, ये थोड़ी सी इंटेलिजेंट भी है और एडिक्टिव भी। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है और ये है बुक इन द फोकस।
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान।
0: So, किताब का नाम है द सीक्रेट हिस्ट्री। 1992 की ये कल्ट बेस्ट सेलर किताब, जो ऑनेस्टली टिपिकल मिस्ट्री नॉवल नहीं है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक बेसिकली कंफ्यूजन से, और मतलब सस्पेंस, किसने किया, क्या किया और क्यों किया। यहाँ से हर मूवी की तरह ये किताब स्टार्ट होती है, और वैसे बहुत ही अमेजिंग फैसिनेटिंग सी किताब है। बुक जो है वो एक एलीट कॉलेज स्टूडेंट के ग्रुप के अराउंड रिवॉल्व करती है। ऑब्सेशन, लोनलीनेस, मोरालिटी और इंटेलिजेंस, इन सब की अराउंड ये किताब जो है वो घूमती है। सब ब्यूटीफुली एक्सप्लोर होता है और इसका वाइब जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक वाइब है। आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है। रेनी लाइब्रेरीज, ओल्ड बुक्स, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस, अगर आपको ये सब कुछ पसंद है तो ये बुक पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी सीक्रेट वर्ल्ड में एंटर कर गए हो। एवरी पेज इज समथिंग लाइक सीक्रेट। सो अगर आपको भी किसी की सीक्रेट पढ़ना पसंद है, देन गो विद दिस बुक जिसका नाम है द सीक्रेट हिस्ट्री। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: Because

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: लास्टिंग ट्रेंड जो है वो वापस आ रहा है, विच इज फिजिकल बुक्स. आज के डिजिटल वर्ल्ड में लोग फिर से पेपर बुक्स की तरफ रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम थक चुके हैं स्क्रीन से. क्यों? क्योंकि स्क्रॉलिंग और रीडिंग में डिफरेंस होता है यार. स्क्रॉलिंग कंज्यूम करवाती है और रीडिंग स्लो करवाती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो एवरीडे आई टॉक अबाउट बुक्स, और आज मैं आपको एक किताब का ट्रिविया बताती हूँ. एक ऐसी बुक जो हर क्रिएटिव पर्सन को सुननी चाहिए. अपने मतलब आपने ऑब्वियसली जो हैरी पॉटर है और उसका नाम तो सुना ही होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, मूवी तो देखी ही होगी. वर्ल्ड्स बिगेस्ट बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है वो. लेकिन क्या आपको पता है ये बुक पब्लिश होने से पहले 12 पब्लिशर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया था. यस, 12.
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइव मस्त है. सो इस 12 पब्लिशर्स ने जो हैरी पॉटर को रिजेक्ट किया, इसका रीज़न क्या है? उन्हें लगा स्टोरी बहुत लॉन्ग है, बच्चे जो है वो फैंटेसी नहीं पढ़ेंगे, और मैजिक स्कूल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत रिस्की है. सो इंटरेस्टिंगली J.K. रॉलिंग उस टाइम पर फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे थे, और सिंगल मदर कैफे में भी बैठ कर राइटिंग करती थी. और फिर एक स्मॉल पब्लिशर ने फाइनली चांस लिया और वही रिस्क पब्लिशिंग हिस्ट्री बन गया. मतलब आज हैरी पॉटर सिर्फ बुक्स नहीं है, फिल्म्स है, मर्चेंडाइज है, थीम पार्क्स हैं, ग्लोबल फैंडम है, और मुझे तो कैफेज भी दिखने लगे उन्हीं थीम पर. सो सब कुछ बन चुका है ऑन हैरी पॉटर. लेकिन इस स्टोरी का बेस्ट पार्ट पता है सक्सेस नहीं है. बेस्ट पार्ट ये है कि रिजेक्शन डजंट ऑलवेज मीन योर आइडियाज बैड. समटाइम्स इट मीन्स कि द वर्ल्ड इजंट रेडी येट. मतलब कभी कभी किसी को वियर्ड लग सकता है आपका आइडिया. और ऑनेस्टली क्रिएटिव वर्ल्ड में ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ना राइट आइडिया, रॉन्ग टाइमिंग, मतलब सब कुछ अटक जाता है. और फिर एक दिन आता है जब सब कुछ बेस्ट हो जाता है, बेटर हो जाता है, आपकी चीज़ों को लोग समझने लगते हैं. सो आप मुझे बताओ कि हैरी पॉटर आपने कितनी बार देखी है और कितने पार्ट्स जो है वो अच्छे से देखे हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

आजकल जिसको देखो इंस्टाग्राम पर अपना मेट गाला 2026 का लुक जो है वो पोस्ट कर रहा है. मतलब मैं किसी ऐसे सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ. लोग एआई से अपना मेट गाला लुक बनवा रहे हैं और उसके बाद जो जो अपना एआई लुक है वो उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं. मैंने अभी तक नहीं किया है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो यूजुअली ऐसा होता है कि लोग यू नो एआई से अपने पिक्चर्स जो है वो क्रिएट करवाते हैं, बड़े बड़े गाउन्स, फ्यूचरिस्टिक जैकेट्स, इम्पॉसिबल फैशन, वो ऐसे पिक्चर्स पोस्ट करें और फिर सबका सेम कैप्शन मेट गाला इफ़ आई वॉज इन्वाइटेड. और ऑनेस्टली अगर मेट गाला एआई जो है मेट गाला लुक होता तो शायद वो ब्लैक वेलवेट आउटफिट बनाता, ड्रामेटिक सनग्लासेस और मतलब हैट में यू नो चाय टाइप का कुछ रखता. क्योंकि मतलब ऐसा ही मुझे लगता है कि अगर कतर से कोई जाता तो ऐसा ही कुछ होता. सो फैशन ना ग्लोबल हो गया है, इमेजिनेशन अनलिमिटेड हो गई है. अगर आप अपना मेट गाला लुक 2026 बनाओगे एआई से, सो आप उसमें क्या ऐसी अप्रोच है जो रखोगे जो आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है और ये बहुत आर्टिस्टिक है. बाय द वे आप मुझे बताओ 3311063 पर. और मैं भी तब तक सोचती हूँ कि अगर मैं अपना मेट गाला लुक बनाती तो कैसा होता. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप हाइपरमार्केट गए हो सिर्फ दूध लेने और वापस आए हो 200 रियाल का बिल लेके? दैट्स नॉट एक्सीडेंट, दैट्स स्ट्रैटेजी। हाइपरमार्केट्स जो हैं वो साइंटिफिकली डिजाइन किए जाते हैं ताकि आप ज्यादा टाइम स्पेंड करो और ज्यादा बाय करो। फॉर एग्जाम्पल, असेंशियल आइटम्स जो हैं वो यूजुअली अंदर डीप साइड पर होते हैं ताकि आप रास्ते में स्नैक्स, ऑफर्स, फैंसी आइटम्स ये सब देख लो और बाद में जब बिल कराने आओ तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी भूख लग जाए और आप कुछ मीठा भी खरीद लो, क्योंकि पूरे बिलिंग काउंटर पे सिर्फ चॉकलेट्स होती हैं और लाइटिंग, म्यूजिक सब कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम स्पेंड हो चुका है। कोई घड़ी नहीं होती किसी हाइपरमार्केट में, कोई खिड़की नहीं होती आपको पता चलाने के लिए कि दिन से शाम हो चुकी है। अब आप सोचो, प्रोडक्ट प्लेसमेंट का सब कुछ जो है साइकोलॉजी के साथ बेस्ड होता है और शॉपिंग कर रहे होते हो आप, स्टोर बिहेवियर स्टडी कर रहा होता है। और ऑनेस्टली बिगेस्ट ट्रैप क्या है? लिमिटेड टाइम ऑफर। इवन इफ यू डोंट नीड इट, ब्रेन बोलता है कि डील मिस मत करो यार, ले लेते हैं। सो इस वीकेंड पर मैंने बस यही किया है। मैं लेने तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें गई थी पर लेकर आई हूं एक लंबा चौड़ा सा बिल। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

सो येस्टरडे वॉज फ्राइडे और आपको तो पता है कि थर्सडे नाइट से मैं स्टार्ट हो जाती हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर. सो कल मैंने ओटीटी पर ग्लोरी देखा, नेटफ्लिक्स पर आया हुआ है, और ऑनेस्टली काफ़ी इंटेंस एक्सपीरियंस था. बाय द वे, दादी की शादी नीतू कपूर का एक मूवी आई है विच आई थॉट कि आई विल वॉच क्योंकि कल 8th को रिलीज होनी थी, बट वो सीधे थिएटर्स में रिलीज हुई, आई ही नहीं ओटीटी पे. फिर मैंने सोचा नहीं यार, इस मूवी के लिए मैं थिएटर तक तो नहीं जा सकती, तो मैंने ग्लोरी स्टार्ट किया विच वॉज लाइक 7 एपिसोड का पूरा सीरीज. और टिपिकल रिवेंज ड्रामा जो है वो नहीं है, ये स्टोरी है थोड़ी सी ट्रॉमा की और उस पेन की जो ईयर्स तक इंसान के साथ रहता है. लीड कैरेक्टर जो है वो रिवेंज प्लान करती है, लेकिन शो का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो एक्शन नहीं बल्कि इमोशन है. और कोरियन ड्रामा का मैजिक भी यहाँ पर मतलब ऐसे ही होता है, स्लो टेंशन, डिटेल कैरेक्टर्स और इमोशनल रियलिज्म. और सिर्फ स्टोरी नहीं देखना, आपको इमोशनली उसमें इन्वेस्ट हो जाना होता है. और मैं हो गई थी, मैंने पूरे 7 एपिसोड सिर्फ 2 दिन में खत्म किए हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. और विजुअल्स भी काफ़ी सिनेमैटिक हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ कलर्स की, साइलेंस की, या एवरीथिंग जो आपका मूड चेंज कर देता है पूरा, यू नो, किसी चीज़ में इमोशनली इन्वॉल्व होने के लिए, बिल्कुल वैसे ही मूवी है. सो आई लाइक इट. मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे इस तरह के एक्शन मूवीज पसंद है जहाँ पर एक बॉक्सिंग बेसिकली उस पूरी 7 एपिसोड्स का थीम है, लेकिन उस बॉक्सिंग के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो होते रहते हैं. सो दैट वॉज लाइक दैट. पर ऐसे ही कुछ चीज़ें मुझे उससे सीखने को मिली हैं विच वॉज लाइक कि अगर आपके दिमाग पर किसी चीज़ का जुनून बैठ जाए तो आप उसके लिए पागल हो जाते हो, फिर आपको समझ नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है. पर वो भी ठीक नहीं है, इतना जुनून किसी भी चीज़ का ठीक नहीं है, विच आई फेल्ट. आप मुझे बताओ कि आपने ग्लोरी स्टार्ट की या नहीं. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो. बिंदास.

By the way, today is Saturday, or every Saturday I have a last thought of show. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. भाई बात करते करते टाइम कैसे निकल जाता है, लिटरली पता नहीं चलता. आज की दुनिया इतनी लाउड हो गई है कि सबको फास्ट रिप्लाइज चाहिए, फास्ट सक्सेस चाहिए, फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन सॉफ्टनेस भी स्ट्रेंथ होती है ये किसी का समझ नहीं आता. काइंड रहना, पेशेंट रहना, काम रहना, ये वीकनेस नहीं है भाई, इमोशनली इंटेलिजेंस कहा जाता है ऐसे. और इस थॉट के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया आपसे प्रोडक्टिविटी मांगेगी लेकिन पीस आपको खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. सो आई विल से कि ऐसे ही आज आप अपना सैटरडे जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए. आई एम श्योर या तो आज आपका हाफ डे होगा या फिर आपकी छुट्टी होगी. अगर आपकी छुट्टी है तो आप उसे अच्छे से एंजॉय कीजिए, कुछ अच्छा प्लान कीजिए. और अगर आपका हाफ डे था और आपका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप घर की तरफ जा रहे हो, तो अपने सारे काम निपटा के घर जाओ, थोड़ा सा आराम करो, फिर यू नो थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाओ कल से, क्योंकि फिर से वीक स्टार्ट हो जाएगा और फिर से टारगेट्स जो है वो आपके सामने होंगे. सो आई विल से इस दिन को बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिव बनाइए. सुंदर रेडियो ऑलिव फॉर नाउ. बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो, बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

देखो मैं एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ, मैं समंदर की जो गहराई है वो नाप सकती हूँ, लेकिन मुझसे सुबह सुबह उठ के वीकेंड के बाद ऑफिस आना नहीं हो पा रहा है। वेलकम जी, गुड आफ्टरनून, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, और ऑलिव रिचार्ज लेकर आपको रिचार्ज करने के लिए आ गई हूँ। देखो रिचार्ज की जरूरत तो मुझे भी खैर काफी थी, क्योंकि ये जो थर्सडे के बाद मेरा ऐसा नींद के झोंके आने का प्रोसेस चालू होता है ना, वो रुकता ही नहीं है। और अभी तक मैं लिटरली बताऊँ, मैं अभी तक जो है थर्सडे में ही हूँ। थर्सडे को मैं जो ऑफिस से गई थी मैं वहीं पर हूँ अभी। बीच में क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता है। खैर जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज मैंने की हैं, जो इंटरेस्टिंग चीजें मैंने की हैं, वो मैं आपको बताऊंगी ऑल ओवर रिचार्ज में। आज वैसे भी 3 घंटे हम साथ में बिताने वाले हैं, सो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहीं रहना है। अमेजिंग वाले गाने आते रहेंगे आपके रेडियो सेट्स पे, उन्हें एंजॉय कीजिए। और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: Hi everyone, this is Benny Deol here.
2: Benny Deol here.
1: Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम ड्रीम बिगर

0: देखो यार, अलग अलग टाइप के लोग जो है अपने आप को अलग अलग चीजों से रिलेट करते हैं. जैसे कुछ लोग जो है एक्टर से रिलेट करते हैं, कुछ एक्ट्रेस से रिलेट करते हैं, कुछ फूल पौधों से रिलेट करते हैं, पेड़ों से रिलेट करते हैं, आसमान से रिलेट करते हैं, तारों से रिलेट करते हैं खुद को. लेकिन मैं जो है खुद को इस वक्त कंपेयर कर रही हूँ एक मोमो से. हाँ, मोमो, डम्पलिंग, डम्पलिंग. वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए ऑलिव रिचार्ज लेकर आ गई हूँ. एंड देखो यार, मैं खुद को ना मोमो से इस वजह से कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि मोमो जो है क्या होता है कि उसको ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पर वो उबल जाए, ठीक है, मतलब स्टीम हो जाए. और इस वक्त मेरी भी हालत वैसी ही कुछ हो रही है. मतलब बाहर जो है टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. यानी अभी के टेम्परेचर में और मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा कुछ फर्क आया नहीं. देखो आज का मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा जो अब सीधे शाम को देखने को मिलेगा. यही सेम फीलिंग जो है मुझे कल भी आ रही थी. कल पूरा जो फ्राइडे है वो मैंने ये सोचने में निकाल दिया कि यार मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं. क्या होता है ना कि मैं अक्सर अपने बाल जो है ना वो शैम्पू करने के बाद फ्राइडेज को बाहर धूप में सुखाती हूं. लेकिन मैंने जो है सिर्फ मैंने बाथरूम से पैर बाहर रखा, खिड़की खोली और मेरे बाल सूख चुके थे. मतलब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बाहर. फिर भी मैंने हिम्मत करी और शाम को जो है मैं बाहर निकली थी. क्या कुछ किया मैंने फ्राइडे को वो बताऊंगी मैं आपको, लेकिन एक अमेजिंग वाले गाने के उस पार. तो ये गाना एंजॉय करो और बाकी मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: सर क्या पर ये बात है.

देखो लाइफ में आपके पास कुछ हो या ना हो, आपके पास एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिसे फोटो अच्छी खींचनी आए, वरना आप कितनी भी एस्थेटिक जगह पर जो है आप चले जाइए, आपकी फोटो जो है वो बिल्कुल सिंथेटिक ही आएगी। देखा आपने, मैंने वर्ड प्ले किया एस्थेटिक सिंथेटिक। वेलकम जी, गुड आफ्टरनून, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश। एंड कल जो है मैं एक अमेजिंग वाला स्पॉट जो है कतर का नया वो एक्सप्लोर करने गई थी। मतलब नया नहीं है, मेरे लिए नया है बिकॉज मैं अभी कतर में नहीं हूँ एंड मैं जो है एक्सप्लोर कर रही हूँ जगहों को। सो मैं कल गई थी कटारा, कटारा हिल्स के पास, वो जहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स बनी है ना दीवारों पे, बीच भी है, वहाँ पर मैं गई। एंड वहाँ पर मैंने सोचा कि आज तो मेरी फोटो बहुत एस्थेटिक आएगी, क्योंकि एक मतलब इमेजिन कीजिए आप कि सन जो है वो धीरे धीरे ढल रहा है, लाइट जो है वो धीरे धीरे गोल्डन होती जा रही है, गोल्डन आर की तरफ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड जो है पीछे व्यू बहुत अच्छा है, पेंटिंग्स लगी हुई हैं कलरफुल सी, आप परफेक्टली तैयार हो, आपके बाल जो है वो बिल्कुल सही बिहेव कर रहे हैं, हवा जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, और बस आपके पास एक दोस्त भी है जो आपकी फ़ोटो खींचने को तैयार है लेकिन उसे फ़ोटो खींचनी नहीं आती। How annoying, how irritating this is, and आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है यार, देखो ये तो। सो इसीलिए जब भी दोस्ती करो ना, एक वो वाला टेस्ट जरूर ले लेना कि सामने वाले को फोटो खींचना आता है या नहीं आता है। खैर, और क्या कुछ किया मैंने वीकेंड पर, ये आपको बताऊंगी मैं, लेकिन थोड़ी सी देर में आप भी जो है मुझे बता सकते हैं कि आपका वीकेंड कैसा रहा, क्या कुछ खास किया आपने, और अगर आपने कुछ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कर लिया है तो हो सकता है कि उससे इंस्पायर हो कि मैं अपना अगला वीकेंड जो है अच्छा कर लूँ, वरना आज का दिन भी तो है ही ना यार, काफ़ी सारे लोगों की तो आज भी छुट्टी होती है। तो 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मुझे बता सकते हैं। खैर, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं अभी आपके रेडियो सेट्स पर, सो इन्हें एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो प्रिंदास।

अब जितने भी लोग जो ग्रुप चैट से जो है हट के अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया करते थे ना कि ये बोल दे वो बोल दे, अब तो देखो उनका खेल खत्म होने वाला है क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो समाप्त होने वाला है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए ऑलिव रिचार्ज लेकर आ गई हूँ। नहीं ऐसा नहीं होगा कि यार मतलब आप जो है सिर्फ आपके जो दोस्त हैं वो आपके मैसेजेस पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था इंस्टाग्राम पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन के थ्रू, वो जो है 8 मई के बाद से अब नहीं होगा। यानी अब आपके जो चैट्स हैं वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है। तो देख लीजिएगा यार ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई भी डेटा जो आपको लगता है कि यार ये जो है मुझे शेयर नहीं करना है सबसे, वो प्लीज आप जाने अनजाने में जो है शेयर ना कीजिए। और मेटा ने काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो बदली हैं, जैसे काफ़ी सारे लोगों के पिछले कुछ समय फॉलोअर्स काफ़ी गिरे हैं क्योंकि वो बॉट्स थे। सो इंस्टाग्राम ने जितने भी मेटा ने जितने भी बॉट अकाउंट्स थे वो सारे बंद किए, तो काफ़ी सारे लोगों के फॉलोअर्स भी गिरे हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है चेंजेस जो है वो मेटा कर रहा है। इनकी डिटेल में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बिंदास मॉर्निंग में एक सुबह देंगे सुदेव के साथ। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन गानों को एंजॉय कीजिए और आकर ज़रा हम क्रिकेट की बात करने वाले हैं कि कल मैच में क्या हुआ और आज कौन कौन सी टीम जो है वो आपस में भिड़ने वाली है। स्टे ट्यून्ड एंड मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास रेडियो।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

कभी कभी ना मैं अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाती हूँ कि जब क्रिकेट नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी. मतलब अगर क्रिकेट नहीं है मेरे लाइफ में तो मेरी लाइफ तो बहुत फीकी फीकी सी लगेगी यार. वेलकम जी, गुड आफ्टरनून. 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए ऑलिफ रिचार्ज जो है लेकर आ गई हूँ. एंड मेरी लाइफ का रिचार्ज जो है वो तब होता है जब मैं क्रिकेट देखने लग जाती हूँ. एंड कल भी मैंने मैच देखा, लेकिन ये मैच जो है बहुत ही एक तरफा सा था. तो कोलकाता और दिल्ली के बीच में कल का T20 लीग वाला मैच जो है वो खेला गया. 51st मैच जो था ये था इस टूर्नामेंट का. एंड अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली ने जो है पहले बैटिंग करते हुए 142 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 20 ओवर्स. एंड कोलकाता ने जो है 147 रन बनाए थे सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर्स के बाद. सो बहुत ही क्लियर लगने लग गया था जब ये मैच चल रहा था ना. सो बहुत ही क्लियर हो गया था कि यार कोलकाता जो है वो जीतने वाली है. अब देखिए कोलकाता जो है वो 7th पोजिशन पर आ गई है. एंड अगर मैं बाकी टेबल की बात करूँ तो सबसे ऊपर हैदराबाद है, फिर गुजरात है, फिर बैंगलोर है, फिर चेन्नई जो है वो अच्छा मैच खेलकर जो है 4th पोजीशन पर आ चुकी है. कल सुदेव जो है काफ़ी सारा खुशी जो है वो मुझे जाहिर करने वाले हैं, काफ़ी सारी खुशी जाहिर करेंगे, काफ़ी मुझे टॉन्ट मारेंगे. लेकिन देखिए हमारी टीम बैंगलोर जो है वो तो ऑब्वियसली ऊपर चली रही है. सो अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपकी रेडियो सेट्स पर. आप मुझे तब तक बताइए कि यार आपको क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट में कौन जीतने वाला है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है. 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप बता सकते हैं. खैर आज कौन सी टीम्स का मैच है इस पर भी बात करेंगे. आप स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आता कि चेस को इतना इंटेलिजेंट गेम कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनको यही इज्जत मिलनी चाहिए, एंड क्रिकेट भी उसमें से एक है. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड ऑलिव रिचार्ज आपके लिए लेकर आ गई हूँ. एंड आई नो, देखिए आप ये कहेंगे कि यार कशिश क्रिकेट को तो सबसे ज़्यादा इज्जत देती है, देते हैं लोग, मतलब क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल और क्रिकेट ही ऐसा स्पोर्ट्स है जो मतलब सब लोग खेलते हैं. लेकिन मैं कह रही हूँ कि ब्रेन गेम की बात अगर हम करें तो क्रिकेट को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अरे दिस इज़ अ फिजिकल स्पोर्ट, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता. लेकिन अभी जब मैं T20 लीग का पॉइंट्स टेबल देख रही हूँ ना, तो मुझे इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि अगर आज का मैच हार गए तो फिर हम कौन सी पोजीशन पे आ जाएंगे, अगर आज के मैच हमने जीत लिया तो हम कौन सी पोजीशन पे आएंगे, कौन सी टीम को कितने मैच हारने पड़ेंगे इस टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए. तो मैं ये सारी कैलकुलेशन लगा रही हूँ, तब मुझे समझ आ रहा है कि क्रिकेट भी जो है वो माइंड गेम का एक हिस्सा है. सो अगर मैं बात करूँ, सो आज मैच जो है वो होना है राजस्थान और गुजरात के बीच में. अब देखिए कि आज का मैच जो है वो इतना हाई स्टेक मैच इसलिए है क्योंकि इस मैच के बाद ही पता चलेगा कि टॉप फोर की सिचुएशन जो है वो क्या है. मतलब आज अगर राजस्थान ने ये मैच जीत लिया तो राजस्थान जो है वो सीधे सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन अगर गुजरात ने ये मैच जीता तो वो टॉप फोर में अपनी जगह बना ली. एंड राजस्थान जो है वो थोड़ा सा मुझे हे वायर सिचुएशन लग रही है उनकी. सो देखते हैं कि आज जो है मैच में क्या होता है. बाकी आप कितने एक्साइटेड हैं, कौन सी टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ज़रूर से बताइएगा 3311063 पर जो है मैसेज करके व्हाट्सएप पर. फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जी अबिंदास.

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। हमने लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास। ऑलिव
1: रिचार्ज। इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

देखो पहले ना मुझे ये लगता था कि हम अजीब है, फिर मुझे समझ आया कि नहीं हम अजीब नहीं है, हम बहुत ज्यादा अजीब है। हम जो है एक देश छोड़कर दूसरे देश आते हैं अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, या अलग अलग रीज़न से। और कई लोगों का एक रीज़न रहता है कि वहाँ जाके तो इतना फैंसी खाना खाएंगे ना, लेकिन यहाँ आके क्या खा रहे होते हैं, यहाँ आके अचार ढूंढ रहे होते हैं। वेलकम टू यू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, ऑलिव रिचार्ज आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड लिटरली मतलब पिछले 3 महीनों में यहाँ आकर मैंने कतर का ऑथेंटिक खाना खाया ही नहीं है, मैं सिर्फ इंडिया का खाना खा रही हूँ। इतना खाना मैं इंडिया का नहीं खाती थी, मतलब इंडिया में मुझे हर दूसरे दिन जो है चाइनीज़ चाहिए होता था, थाई चाहिए होता था खाना, या कोई ऐसा अलग टाइप का खाना चाहिए होता था। लेकिन यहाँ अगर मैं सिर्फ इंडियन क्विजींस खा रही हूँ, और इंडियन क्विजींस में भी 3-4 टाइप की चीज़ें हैं, वही मैं रिपीट पर खा रही हूँ। आप एक बार मेरा जो है फूड डिलीवरी ऐप देख लेंगे, तब जो है ना आपको मेरे लिए थोड़ी सिंपैथी आएगी कि इंसान पिछले 3 महीनों से सेम खाना खा रहा है यार। लेकिन देखो अपने घर से थोड़ा दूर आकर ना अपने नेटिव कंट्री के, अपने घर के खाने की ना बहुत याद आती है, एंड अलग टाइप की एक फीलिंग होती है। उस फीलिंग के लिए जो है आप कितने भी पैसे देने को तैयार हो जाते हो, जो आपको जो है एक फाइनेंशियल एंजाइटी दे देता है। मतलब अभी तक मेरी आदत नहीं जा पाई है कतरी रियाल को रुपीज़ में कन्वर्ट करके जो है वो देखने की। मैं अभी भी जो है कन्वर्ट करके देखती हूँ कि यार ये जो है इंडियन रुपी में कितने का होता है, यार ये तो काफ़ी महंगा लग रहा है। लेकिन वो आपको कतर के एकदम बीच में जो है वो नॉर्थ इंडियन खाना दे रहे हैं, ये भी तो सोचो। खैर ऐसी ही एक खबर जो है मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ रही थी, जहाँ पे 75,000 रुपीज इंडियन रुपीज जो है वो एक लेडी ने खर्च किए डोसा के लिए US में। और इसके बाद उन्होंने पोस्ट किया कि ये करने के बाद ना मुझे काफ़ी फाइनेंशियल एंजाइटी जो है वो लग रही है। अब देखो यार मसाले जो है, या जो डोसा का पेस्ट है, इडली का पेस्ट है, ये सब चीज़ें बनाने में ना मेहनत लगती है, और मेहनत जो है वो जस्टिफाई तो करनी पड़ेगी फिर पैसों के साथ। आप बताइए आपने कौन सा ऐसा महंगा फूड आइटम खरीद के खाया है। 3311063 पर मैसेज करके मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

0: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज ओलिव रिचार्ज
0: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
2: ओलिव रिचार्ज
3: With Homes Are Us. We complete your home. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

यार क्या आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें कल रात को नींद नहीं आई या जो पूरी रात बस करवटें बदल रहे थे? अगर हाँ तो आप असली फुटबॉल फैन है मेरी जान। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए ऑलिव रिचार्ज जो है मैं लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए यार, आज जो है आमिर कप का फिनाले होने वाला है जिसके लिए पूरा कदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जितने भी फुटबॉल फैंस थे वो आज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मतलब मेरे ऑफिस में भी कुछ ऐसे फुटबॉल फैंस हैं जो जब जब उनके पास से गुजरो सिर्फ इसी बारे में वो बात कर रहे थे। सो आज खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है ये मैच खेला जाना है 5:30 बजे से, यानी 5:30 से। सो लेट्स होप कि बेस्ट टीम जो है वो जीत जाए। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो या आप मुझे बता सकते हो 3311063 पर जो है मैसेज करके। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जी ओ बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पाडवी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: यार ये टाइम कितनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा है. मतलब अभी अभी तो आई थी मैं आपको हाय हेलो कहने और ये बताने के लिए कि मेरा वीकेंड कैसा गया और अब ये दिन भी चला गया. वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए ऑलिव रिचार्ज जो है वो लेकर आई थी. बहुत सारी बातें हमने की, हमने गाने सुने, क्रिकेट की बातें की, लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का. मुलाकात होगी अब आपसे कल सुबह 6 बजे आपके मेज़बान सुदेव के साथ बिंदास मॉर्निंग में. सो आना बिल्कुल मत भूलना और तब तक अपना प्यार जो है वो हमें देते रहिए. 3311063 ये है हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर, इस पर जो है आप हमें मैसेज करके अपनी बात जो है वो हम तक पहुँचा सकते हैं. फिलहाल अब मैं चलती हूँ, सिमरन जो है वो अब अपना 100 किलो वाला प्यार लेकर आपके पास आने वाली है. सो बस मुझे मिस करते रहिएगा और कल जरूर से आना बिंदास मॉर्निंग पे और मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना.

इतना सा छोटा सा वीकेंड होता है यार, पता भी नहीं लगता कब आता है और कब चले जाता है, लेकिन यार रिफ्रेश तो इंसान को कर जाता है यार। एक बार और फिर से चार घंटे जो है वो अपने होने वाले हैं, 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ। मेरा वीकेंड कैसा रहा वो भी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपका आज का दिन और आपका वीकेंड कैसा रहा 3311063 पर आप प्लीज मुझे बताइए। मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि अकेले चार घंटे तो बिल्कुल नहीं कटने वाले, आप लोगों का साथ तो जरूर चाहिए और फुल ऑन अटेंशन चाहिए, एकदम ध्यान मेरी तरफ ही होना चाहिए। चाहे काम आप जो मर्जी करते रहे, रेडियो ऑन रहना चाहिए और मुस्कुराइए, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हैं।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: हाय, दिस इज एयर अमान। लिसन टू माय सॉन्ग्स ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव।
4: जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
9: जॉय आलूकास्ट, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर,
10: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस। वी कंप्लीट।

0: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग यार कि आपका वीकेंड कैसा रहा। जिन्होंने अभी तक नहीं बताया कि उनका वीकेंड कैसा रहा, क्यों नहीं बता रहे हो यार, क्या दिक्कत हो रही है आपके लिए अलग से कुछ, मैं मतलब कुछ बोलने वाली हूँ, नहीं बोलोगे तो बोल दूंगी यार, आप लोगों से इतना प्यार तो है ना। सो यार मेरा वीकेंड कैसा रहा, मेरा इस ऐसा थोड़ा है, मैंने कुछ टाइम से पक्का कर लिया है कि मैं फ्राइडे को कहीं नहीं निकलने वाली, फ्राइडे को मेरे को मेरा मी टाइम जो है वो चाहिए। लेकिन थर्सडे नाइट येस ऑफकोर्स आई वॉज आउट और एक बर्थडे पार्टी थी और उसकी ट्रीट थी एंड बस बेतहाशा खाया, बहुत सारा खाया और उसके बाद ऐसा रिग्रेट भी आता है कि यार सिमरन और तुमने क्यों खाया, लेकिन दैट्स ओके, आई हैड फन। एंड अराउंड 4 AM मैं सोई, जो कि मेरा टारगेट रहता है कि सारी रात जागूं, ताकि क्योंकि फ्राइडे को आपको सोना होता है, तो मैं फ्राइडे को मस्त सोई और मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट था, अब आप उसको बोलेंगे कि सिमरन कौर इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, चलो जो भी आप बोलो आप नाम रख दो, 4 बजे उठ के दोपहर के शाम के 4 बजे मैंने प्रोटीन पैनकेक्स खाए। एक जगह है जहाँ से मैं मेरे फेवरेट प्रोटीन पैनकेक्स जो है वो मुझे मिलते हैं, सो या मैंने वो खाए और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है वो एक सीरीज थी वो देखी जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बात कर रहे हैं। रुक जाओ यार, एक तो मैं इतनी सीरीज देखती हूँ और मुझे ना याद नहीं रहता है कि कौन सी, हाँ If Wishes Could Kill, I hope मैं सही नाम ले रही हूँ, सो वो मैंने स्टार्ट की, उसके 1.5 घंटा देखने के बाद मुझे फिर से नींद आ गई और मैं फिर से बहुत सारा सोई और फिर मैं उठी रात के 8:30 बजे। मैं मेरा फ़ोन DND पे लगा के सो जाती हूँ, बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। फिर उठ के मैंने चाय वाय और खाना वाना जो था वो ऑर्डर किया, देन थोड़ा सा रूम जो था वो सेट किया। अब क्या है कि दिन भर जब सो लेता है इंसान तो क्या होता है, रात में नींद नहीं आती है, तो सुबह 4:30 में तक ऑलमोस्ट जागती रही और फिर मैं 6 बजे उठ गई क्योंकि सैटरडे को थोड़ा जल्दी उठना होता है। सो या और उठी तो मैं फ्रेश थी क्योंकि जब आप अच्छे से रेस्ट ले लेते हो तो फिर आपकी बॉडी जो है, चाहे 2 घंटे की भी नींद है तो उसके बाद भी आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है। दैट्स हाउ आई स्पेंट माय वीकेंड। आप भी अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं 3311063 पर।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio Olive.
1: I'm a number one. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with
5: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
6: Supported by Homes R Us, we complete.

धुरंधर के दीवाने जो है तैयार हो जाइए। धुरंधर का पार्ट वन जो है ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। सिमरन कौर आपके साथ। सो धुरंधर का पार्ट टू यानी कि धुरंधर द रिवेंज जो है वो रिलीज होने वाली है इस 14 मई को, यानी कि ये जो आने वाला वीकेंड है हमारा और जबरदस्त जो है होने वाला है। ये खास इसलिए भी है, इसमें जो जो सीन आपने थिएटर में जिन लोगों ने नहीं देखे थे, हमने तो खैर थिएटर में देखी नहीं थी, है ना। सो रॉ अनदेखा जो है इसमें होने वाला है, पूरी की पूरी धुरंधर रिवेंज जो है वो रिलीज करने वाले हैं। सो इसमें दो सीन जो है वो रहने वाले हैं। फॉर इंटरनेशनल जो यूजर्स हैं, ऑडियंस है, उनके लिए जो है ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। सो जो इंडियन है उनके लिए ये स्ट्रीमिंग फिल्म जो है वो जियो हॉटस्टार पे होने वाली है। सो होपफुली हमको ये देखने के लिए मिलने वाली है। सो बड़े मजे आने वाले हैं। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कम

यार कल शाम में भी ठंडी हवाएं चल रही थी, बेचारा वेदर कितना कंफ्यूज है यार। जी सुन लो, आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 39 डिग्री सेल्सियस के अराउंड और मिनिमम जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। विंड जो है वो 25 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ह्यूमिडिटी जो है वो 18% है। यस ऑफ कोर्स, अब फिर से वही वेदर आ चुका है जब हम मौसम को देख के ही अपने प्लान जो है वो बनाने वाले हैं। देखो यार, मतलब पता नहीं वो कैसे लोग हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जो कि ब्रंच के लिए निकल लेते हैं। खैर मेरा तो सर्दियों में भी उतना मन नहीं करता, लेकिन यार इतनी दोपहर ही में उठना और रेडी होना और बाहर मतलब अपनी कार तक पहुंचने में भी एक जो है वो हिम्मत जो आपकी लगती है। बट या एक बार आप नहा धो के वीकेंड में रेडी हो जाओ ना, उसके बाद जब आप जाके किसी फैंसी सी जगह पे बैठ के खाते हो ना, फिर आपको लगता है अरे यार मैं घर पे सोते सोते कर क्या रही थी। बट लेकिन मतलब बेड से लेके बाथरूम तक का सफर, बाथरूम से लेके कार तक का सफर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिमरन गौरे आपके साथ, बिंदास।

जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं वीकेंड पे बहुत सारा सोई, और ये क्या होता है कि हफ्ते में एक दिन आपकी बॉडी को पूरी रेस्ट की जो है वो जरूरत होती है, क्योंकि नॉर्मली मेरी टाइमिंग बहुत ज्यादा गंदी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं 2-3 बजे से पहले जो है वो सोती नहीं हूँ, बट येस ऑफकोर्स मैं उठती भी थोड़ा लेट हूँ, 9:30-10 के अराउंड, क्योंकि मेरा ऑफिस लेट होता है, मेरा शो शाम का होता है ना। बट क्या होता है कि उसी के बीच मतलब बॉडी को जो है वो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालती हूँ कि जब मैं पूरा दिन सो सकूँ, वो है मेरा फ्राइडे, जहाँ पर मैं मेरा फोन D&D पे रहता है और मैं कोई प्लान नहीं बनाती हूँ, और मतलब बहुत मतलब अगर नहीं सर सक रहा है तो मैं शाम को जो है वो बाहर निकलती हूँ। बट अगर आपके साथ ऐसा है कि आप सोते भी बहुत हो, बट आप मतलब 12 से 15 घंटे सोने के बाद भी आप फ्रेश नहीं फील करते हो, आपको ऐसा लगता है अरे यार और भी सोना है, तो भाई यहाँ पे दिक्कत जो है वो आप में है। एक कंडीशन होती है जिसको हाइपरसोमनिया बोलते हैं, ये वो कंडीशन है जहां पर आप 12 से 15 घंटे सो रहे हो लेकिन फिर भी आपने आपको टाइट फील कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कल पूरा दिन सोई और फिर रात में मेरे को 2 घंटे की नींद ही मिल पाई है, लेकिन सुबह मैं बिल्कुल फ्रेश उठी हूँ, मतलब वो मेरी मच नीडेड थी बॉडी को रेस्ट। बट अगर आप इतनी सारी रेस्ट लेने के बाद भी थका हुआ फील कर रहे हैं तो भाई साहब ये सीन है आपका। सोया सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास, और सबसे ज्यादा जरूरी है पानी पीना। कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी आपको ऐसे लगता है यार फटीग सा फील हो रहा है और टायर्ड है, क्योंकि आप पानी बराबर नहीं पी रहे हो दोस्त, तो थोड़ा सा ध्यान रखो अपना।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Olive, your happiness frequency. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, main hu Vivek Anand Oberoi. You're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
5: I'm the number one. Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ.
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
10: जॉय आलूकास्ट, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर.
11: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी

0: दोस्तों जेन जी डिकोडेड में हम आजकल बात कर रहे हैं जेन जी डेटिंग टर्म्स की।
1: जेन जी डिकोडेड
2: ऐसे है क्या?
0: दा दा दा। हां जी सिमरन कौर आपके साथ। जेन जी डेटिंग टर्म में एक वर्ड आता है स्नीकी लिंक। ये होता है एक सीक्रेट रोमांटिक पार्टनर होता है आपका, जिसको आप अपने दोस्तों से और सोशल मीडिया से छिपाते हो। मतलब उसके लिए वो एक हाथ भी जो पोस्ट करते हैं वो भी पोस्ट नहीं करते हैं, सीक्रेटली उससे मिलते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी सीक्रेट रखते हैं। भाई साहब ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा? वैसे मुझे लगता है कि जितना चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, खैर ये तो स्नीकी लिंक है, कोई भी रिलेशनशिप हो छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि जब नाक कटे तो फिर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा इंसान को जो है यही चीज ले डूबती है, उसको भी पता है, उसको भी पता है, अरे हम तो बड़े लवी डबी थे उन लोगों के सामने, अब उनको क्या जवाब देंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, उनकी सब लोग टेंशन करते हैं यार। सिमरन गौर आपके साथ, जियो बिंदास।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
0: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट शुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट.

बाय द वे, अगर शाम हो गई है, बाहर निकलने का थोड़ा सा मन हो रहा है क्योंकि दिन भर आपने रेस्ट कर ली है, करवा देती हूँ कि एक जगह जहां पर आप जा सकते हैं वो है मॉल ऑफ कतर। इनकी सेल का जो है उन्होंने एक्चुअली एक्सटेंड कर दिए थे अगले 3 दिन, सो आज लास्ट डे है मॉल ऑफ कतर में सेल का। तो अगर कोई चीजें आपकी बची हुई हैं और आपको अच्छा लास्ट मिनट जो है कुछ शॉपिंग करनी है, वो भी डिस्काउंट के साथ, जिसमें आपको अप टू 70% डिस्काउंट मिल रहा है बहुत सारे ब्रांड्स पर, बहुत सारा मतलब मामला आपका सेट है, वहीं पे जाके आप डिनर कर लीजिएगा तो आपका वीकेंड जो है वो बचा खुचा जो है वो एकदम शॉर्ट हो जाएगा। सो यार मैंने सोचा एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्रॉपर सामान लिख के जाते हैं कि उनको ये चीज खरीदनी है, एंड बस वही कट टू कट सामान खरीदा और निकल लिए। लेकिन कुछ मैरिज ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ एक लिपस्टिक खरीदनी होती है, लिपस्टिक तो नहीं खरीदते हैं लेकिन और सामान 10 खरीद के आ जाते हैं और बाद में सोचते हैं अरे ये कब हुआ, ये मैंने कब किया। सोया सुमन गौरी आपके साथ, जी अमिंदास, इसीलिए मैं अपने साथ एक दोस्त रखती हूँ और उसको बोलती हूँ कि मैं अगर किसी भी चीज पे हाथ डालू तो मुझे बोल देना सिमरन गौर तुमको ये जरूरत नहीं है। सोया ऐसा मैं कर दूँ, आप भी ट्राई करिएगा अगर आपकी मेरे जैसी आदतें हैं तो।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
0: साथ जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट.

0: Hi, मैं हूँ सुहाली खान and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
2: इश्क का राजा ADDY उसने की रानी इश्क का राजा
3: ADDY
2: उसने की रानी

0: भाई साहब ये इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स का ड्रॉप तो रुक ही नहीं रहा है। आपको पता है ना कि मतलब इंस्टाग्राम ने स्टार्ट किया हुआ है कि जितने भी जो अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे जो कि इनएक्टिव हैं, फेक हैं, ऐसे बने हुए हैं, उन सब की सफाई जो है वो इंस्टाग्राम पे चल रही है, जिसके चलते बहुत सारे जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो चले गए हैं। यहाँ पे उनको छोड़ो, मुझे अपनी दिक्कत है, थर्सडे तक मेरे 1000 फॉलोअर्स थे वो गए थे, मेरे को लगा चलो यार कोई बात नहीं, अभी तक मेरे 3000 फॉलोअर्स जो हैं वो जा चुके हैं यार, मतलब क्योंकि उनमें से वो इनएक्टिव जो फॉलोअर्स थे और कुछ जो थे जो फेक बना के रखते हैं अपनी प्रोफाइल जस्ट टू स्टॉक समवन, है ना, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं है, उन सब को रिमूव कर दिया गया। भाई साहब 3000 फॉलोअर जाते जान जाएगी, इनके 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन चले गए सेलिब्रिटीज़ के, उनको कितना दुख हो रहा है यार। अगर आप भी चेक करिए आपके फॉलोअर्स जो है वो चले गए हैं, तो आप पैनिक मत करिएगा, क्योंकि ये और कोई नहीं है, ये सफाई हो रही है अभी इंस्टाग्राम पे। एंड इंस्टाग्राम की एक और बड़ी बात है जो कि मैं आपको वापस लौट के बताने वाली हूँ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो

इंस्टाग्राम की एक और बड़ी अपडेट है जिसका आपको बहुत अच्छे से अब ध्यान रखना और सीरियसली लेना है इसको। अब क्या है कि आपके बाबू ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे जाके लिखना स्टार्ट कर दोगे। वहां पे बहुत सारी पर्सनल चैट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और कभी कभी वो चैट्स पढ़ के आपको लगता रहे यार इस लेवल तक मैंने मैसेजेस किए थे इस इंसान को। सो वो इंस्टाग्राम पे आप कोई भी पर्सनल चीजें भेजना बंद कर दो, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो खत्म हो चुकी है इंस्टाग्राम की। यस, 8th ऑफ मे था लास्ट डे, अब ये खत्म हो चुकी है। आप जो भी इंस्टाग्राम पे अब शेयर कर रहे हो, चैट कर रहे हो, वो अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो मेक श्योर ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। सोशल मीडिया चाहे कोई भी हो, व्हाट्सएप भी हो, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको, हम सबको जो है एक लिमिट में रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जो है कहीं पे भी सेफ नहीं होती है। सो या मैंने सोचा आपको एक रिमाइंडर दे दूं। सिमरन कौर है आपके साथ, जियो बिंदास। बाबू ने ब्लॉक किया तो कोई चक्कर नहीं है बाबू, जब हम ब्लॉक करेगा तो कर लेना, ऐसे वहां वहां जाके जरूरत नहीं है मैसेज करने की, क्योंकि बाबू को भी पता है बाबू ने क्या किया है। जियो बिंदास, खुश रहो यार।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: जॉय आलूकास, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर,
8: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट।

0: भाई साहब ये बच्चे बड़े शणे हैं यार.
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
2: वायरल ये बात है.
0: आपके साथ अब क्या है कि इंस्टाग्राम जो है वो छाया हुआ है. मैं एक न्यूज पढ़ रही थी, आपको पता है ना कि एक सर्टेन एज होती है टू ज्वाइन सोशल मीडिया, टू ज्वाइन इंस्टाग्राम. कुछ बच्चे जो हैं, मैं एक न्यूज पढ़ रही थी जिसमें क्या है कि फेक मूछे लगा के, फेक मुस्टैच लगा के पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन को ओके करवा रहे हैं. भाई साहब ये अलग लेवल का सीन जो चल रहा है. इसीलिए कहता है कि पेरेंट्स को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए कि यू नो कि बच्चे जो हैं वो क्या अपने फ़ोन पे जो है वो यूज़ कर रहे हैं. मैं थोड़े दिन पहले मेरी एक फ्रेंड से मिली थी, उसकी बेटी आई गेस शी इज़ अराउंड 13-14, अभी तक उसका कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है. तो क्या होता है कि पेरेंट्स को एक सर्टेन एज तक बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है. तो बच्चे अगर छोटे छोटे ऐसे हैं कि भाई फेक मूछे बना के वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन दे रहे हैं टू ओपन इंस्टाग्राम अकाउंट, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन वाली बात है यार. क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कभी भी कुछ भी आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे जब बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो उनका खास ध्यान रखना पड़ता है. सो या सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
6: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी

लास्ट डे है तो देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा. लास्ट डे डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड का एक आउटडोर थीम पार्क है जो कि 900 पार्क में है. सो 900 पार्क में अगर आप जाएंगे तो ये डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड आपको मिलेगा, जिसमें लाइव शोज है, परफॉर्मेंसेस है, मैस्कॉट्स है, बहुत सारी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज है. नॉट फॉर किड्स, सभी लोगों के लिए, सभी एज के लिए, खाना पीना सब कुछ है और ये फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा. सो अभी तो मैं वीकेंड की टाइमिंग आपको बताने वाली हूँ क्योंकि आज ही इसका लास्ट दिन है. आज सैटरडे रात के 11 बजे तक आप जा सकते हैं. टिकट आपकी जो है वो मिलेगी स्नूनू एस सिटी पर, आपको ऑनलाइन जाके बुक कर लीजिएगा एंड हैव फन. लास्ट डे है यार. सिमरन कौर आपके साथ, सी यू बिंदास.

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कम

जब आप रेडियो ऑलिव सुन रहे हो तो रेडियो ऑलिव के हर प्लेटफॉर्म पे उसको फॉलो भी करना जरूरी है। अच्छा लगता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो कि अभी कतर में नहीं हैं और कतर से जब बाहर भी जहां पे भी वो रह रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू हमें सुनते हैं, जिसकी जो है डेजी जी हैं कनाडा से हमको सुनती हैं, एक हमारे फैन है वो नॉर्वे से हमको सुनते हैं, बहुत सारे फैंस हैं इंडिया से सुनते हैं, नेपाल से सुनते हैं, बांग्लादेश से सुनते हैं, श्रीलंका से सुनते हैं। सो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन आपके फोन में अगर है तो आप हमें सुन सकते हैं। एंड olive.qa ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है वो हमें सुन भी सकते हैं और हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे इंटरव्यूज, पॉडकास्ट एंड नए नए जो न्यूज हैं, नए नए इवेंट्स आने वाले हैं उसके बारे में भी हम सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी टीम को आप जो है वो olive.qa हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सो या पॉडकास्ट भी अपलोड करते हैं, जैसे कि शायरी विद सिमरन जो है मैं पॉडकास्ट करती हूँ, क्लिक करेंगे अगर आपको शायरी में इंटरेस्ट है तो आप सुन सकते हैं। और एप्लीकेशन तो वही है रेडियो ऑलिव की, डाउनलोड कर लीजिए एंड कभी भी आपकी पॉकेट में रहेगा यार रेडियो, फिर आपको मिस नहीं करना पड़ेगा हमको। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बस सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो विंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
3: जियो बिंदास.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
0: साथ. जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
7: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट

0: कुछ ऐसे लोग और ऐसी मैं भी हूँ, और अभी तक मैं थोड़ा सा अपने आप को सेट कर नहीं पा रही हूँ, बट काफी हद तक मैंने अपने आप को चेंज तो किया है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हाँ जी, आपके साथ हमारी अपब्रिंगिंग मुझे कह लीजिए कि ऐसी रही है शुरू से, कि हमारा दिल जो है वो बड़ी जल्दी पिघल जाता है कि कोई किसी को हमारी जरूरत है। हम मतलब वो कहते हैं ना पंजाबी दे विच एक पैर ते खड़े रहने आप, मतलब किसी को हमारी जरूरत है हम वहां पे पहुंच जाएंगे, हम वो सारी चीजें करेंगे और मतलब हम तैयार रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको ये भी पता है कि जब जब आपको जरूरत पड़ी है तब तक बहुत सारे लोग जो है वो आपके साथ रहे नहीं है, जो कि ये दावा करते हैं आपके साथ रहने का, आपके साथ खड़े रहने का, है ना। मैंने ये चीजें मेरी लाइफ में पहले तो नहीं नोटिस करती थी, अब मैं जरूर नोटिस करने लगी हूँ। और क्या होता है कि कभी कभी तो कोई फॉर एग्जांपल वो सामने देख भी रहे हैं, है ना, तो वो आपके बारे में नहीं पूछेंगे। सो अपनी लाइफ में ना आप एक रूल बना लीजिए कि जो आपके लिए खड़ा है ना आपकी लाइफ में, आप उसके साथ खड़े रहिए, और बिना मतलब कि अगर किसी की लाइफ में आप उनके हिसाब से जब उनको आपकी जरूरत है स्टैंड करते रहेंगे, तो यहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वा रहे हो और मेंटल आपका जो है ना वो ऑलरेडी मेंटल कंडीशन जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको भी पता है कि यार सामने वाला तो ही और शी इज यूजिंग यू, मतलब उनके बुरे टाइम के लिए। सो मेक श्योर कि आप उन्हीं दो चार के साथ जो है वो खड़े रहिए आपकी लाइफ में, जो कि आपके लिए खड़े रहते हैं। एक्सपेक्ट करो, मैं करती हूं, मैंने पहले भी बोला है, अगर आप अपनों से एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो क्या पड़ोस वाले अंकल से एक्सपेक्ट करोगे या आंटी से एक्सपेक्ट करोगे, उनसे आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो अपनों से करता है इंसान। सो या सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुबर
5: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट

सारी चीजों को साइड में रख के अब आप पे सारा ध्यान देते हैं। वैसे चार घंटे आप ही लोगों पे तो ध्यान रहता है यार। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। अब मैं नेम गेम में सिर्फ और सिर्फ लेने वाली हूँ आप सबके नाम, बट मेक श्योर कि आप कुछ रूल्स को फॉलो कर लीजिए। नेम गेम का रूल जो है वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना है। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम जो है वो मुझे दिखाई देंगे, वो सारे नाम जो है वो मैं बोलने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखिए 3311063 पर। चलिए नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। निशांत, अबरार, नजीमुल्ला, कोमल, मोहम्मद अली, डेजी, परमेश्वर जी, तुषार जी, जस्ट मत लिख के भेजिए, अपना नाम लिख के भेजो दोस्त। हृदान जी, थैंक यू सो मच। प्रीति जी, थैंक यू सो मच। मेजर जी, थैंक यू सो मच। अदील जी, राकिब जी, इद्रीस जी, मनोज जी, अली जी, चंदन जी, जुल्फी जी, अमित जी, रिशान जी, इब्राहिम जी, दोस्त हाय नहीं सिर्फ और सिर्फ नाम, तेजिंदर जी, हाफिज जी, गुलाम जी, दानिश जी, थैंक यू सो मच। शाहिद जी, थैंक यू सो मच। आकाश जी, थैंक यू सो मच। शिराज जी, थैंक यू सो मच। श्रवण जी, थैंक यू सो मच। बशीर जी, थैंक यू सो मच। संतोष जी, थैंक यू सो मच। चेरी जी, थैंक यू सो मच। आलम जी, थैंक यू सो मच। जीन जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए बेटा, अब आप थैंक यू लिख सकते हो, और जिनके रह गए कल ट्राई कर लेना यार। अच्छा, अब आप थैंक यू के साथ ना अपना फेवरेट वाला इमोजी जो है वो जरूर भेजेंगे। सी यू, बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening make you drive golden with
5: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
6: Supported by Homes R Us, we complete your home.

0: आप सिमरन कौर के यहाँ से गल्ली माने गड़ाई मा चुका है जी मैं जी सुनियो किदा दी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। अब कल शाम को होती है आपसे 5 बजे फिर से मुलाकात, जहां पर वीकेंड नहीं होगा ना, वीकेंड की फील होगी लेकिन इंतजार जरूर होगा एक बार फिर से वीकेंड का, तो टेंशन नहीं लेनी है ठीक है। एंड टाइमली सो जाइएगा, कल हफ्ते का पहला दिन है, फिर हॉच वॉच नहीं होना चाहिए क्योंकि कल कतर का संडे और इंडिया का मंडे टाइप्स होने वाला है। ओके सो अगले 2 घंटे जो है मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए, ओवर थिंकिंग मत करना, पानी वानी पी लेना और सोने से पहले बहुत सारा पानी मत पीना वरना लगे रहो के आना जाना लगा रहेगा सारी रात। सुखाते मिंद रहो, ऐश करते रहो, चेहरे दे बड़े वाली स्माइल, लोगों किसी का दिल मत दिखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।
1: रेडियो ऑलिव पर सॉन्ग ऑफ द आवर ये

अच्छा, रात की इस हवा में कुछ अलग सी शांति होती है, अलग सा सन्नाटा होता है, अलग सा सुकून होता है। जहाँ दुनिया सो चुकी होती है, कई बार सो रही होती है, तो वहीं आपका दिल अभी भी जग रहा होता है और आपसे कुछ कह भी रहा होता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता ना, तब आप खुद होते हैं सुनने वाले, नहीं? तो चलिए आपके दिल की आवाज के साथ आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि मैं यहां से आपके दिल की आवाज आ चुका हूं मिडनाइट लाउंज में। मैं आपके दिल की आवाज आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में आ गया हूं। जनाब कैसे हैं आप? कैसे हैं कि जब मैं पूछता हूं भी, मतलब तो इसका मतलब लिटरली जानना चाहता हूं कैसे हैं, इसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो कर लीजिएगा ताकि रिश्तेदारी गहरी हो जाए। और मूड आज कैसा है मुझे बताइए, उसके हिसाब से बढ़िया सा गाना चलाते हैं। प्यार में आए हो तो प्यार भरा गाना चलाते हैं या फिर प्यार की सच्चाई भरा गाना चलाते हैं। अगर मस्ती के मूड में हो तो थोड़ा सा फन भी होना चाहिए, और अगर थोड़ा सा माइंड आज परेशान है, उदास हो, तो चलो हम उसे चिलपिल कर देंगे यार, परेशान नहीं होने का, हम साथ है ना, तो साथ मिलेगा जब एक दूसरे के साथ, दिल भी कहेगा। जी ओपन दास, स्टे ट्यून्ड।

कैसेट्स का वो जमाना याद है जब मतलब गाने के मिड तक पहुंचने के बाद उसे पूरा ही सुनना पड़ता था, ये स्किप वाला ऑप्शन नहीं होता था जैसे आजकल यूट्यूब के एड ब्रेक्स हैं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। आज प्लेलिस्ट शफल कर लो, स्किप कर दो या फिर गाना अपनी मर्जी से चूज करके आगे पीछे करके चला लो, लेकिन तब कितना अलग होता था ना, स्मार्ट टीवीज हुआ करते थे ना, मतलब एक नॉर्मल एक डब्बा सा वो बड़ा सा इतना मोटा सा टीवी हुआ करता था, उसमें भी मतलब अगर आपका केबल लगा हुआ तो केबल वाले भैया से कभी कभार कह के हम मूवी तक लगवाते थे, भैया आज वो वाली मूवी लगा देना, एंड ट्रस्ट मी जब वो मूवी लगती थी ये पक्का भैया ने हमारे कहने पर लगाई, एक अलग खुशी हुआ करती थी। उस टाइम पे ना चीजें भले ही स्किप नहीं हुआ करती थी, टाइम भी उतना ही हुआ करता था जितना उतना, जो 24 घंटे का दिन तब भी था और आज भी है, बस फर्क इतना है तब पेशेंस बहुत था, तब पेशेंस हमको करना, देखो था नहीं वो हो ही जाता है जब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। आज आप कई चीजों में एडजस्ट करते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, जिस दिन उड़ने वाली गाड़ियां आ जाएंगी ना तो उस दिन आपके अंदर ये पेशेंस भी खत्म हो जाएगी कि रोड पे वेट कर लो, आप धर्र से उड़ जाया करोगे। तो धीरे धीरे ना हम फैसिलिटीज के साथ मुझे लगता है हम अपने पेशेंस खत्म करते जा रहे हैं जो हमें शॉर्ट टेम्पर्ड बना रहे हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी में ग्रो करना अच्छी बात है पर इतना भी नहीं कि खुद को इम्पेशेंट बना दे। नहीं, तो पेशेंस आपने रखा तो एक बढ़िया सा गाना तो बनता है। क्या बात है नूर जी, आपके कहने पे एक प्यारा सा गाना चला रहा हूँ, फिर जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ सी ओपन दास।

एक गाड़ी के पीछे लिखा दिखा था मैंने, आई थिंक आई वॉज इन सिक्स स्टैंडर्ड, सिक्स और सेवन्थ समथिंग, हाँ। और मैंने वो जब गाड़ी के पीछे लिखा देखा ना, उसके बाद वो दिमाग जहन में बैठ गई, आज तक याद है। सोचो जैसे कुछ कुछ बातें किसी की याद रह जाती है, छोटी छोटी सी चीजें। नो वन कैन लव यू 24 आवर्स ऑफ अ डे एंड नो वन कैन बी बिजी 24 आवर्स ऑफ अ डे, दोनों स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर। 106.3 रेडियो ऑलिव आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। मिडनाइट लाउंज में कोई इंसान कहे ना कि यार मैं बहुत बिजी था, बहुत बिजी था, ट्रस्ट में ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि उसने फोन एक मिनट के लिए भी हाथ में ना लिया हो। एक्चुअली उस बिजी शेड्यूल में उसे आप याद नहीं आए। अब मैं देखो भड़का नहीं रहा, लेकिन मेरी जान जब उसे और कोई याद आ गया लेकिन आप याद नहीं आए, तो कहीं ना कहीं शायद आप अभी उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना आप समझ रहे हो। और कहते हैं वैसे भी ये तो गलत फहमी है कि अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट समझना किसी की लाइफ में, क्योंकि आपसे बेहतर जब किसी को कोई मिल जाता है ना, तो आप बस फिर एक बस नॉर्मल आधे रिश्ते तो कहते हैं इसलिए चल रहे हैं कि क्या पता कभी इनसे कुछ काम पड़ जाए, यही सोच के। नहीं वैसे ऑफिस की ईमेल्स, डेडलाइंस और नोटिफिकेशंस के बीच दिल को सिर्फ एक मैसेज चाहिए, हे व्हाट्सअप क्या हो रहा है। तब बिजी भी होते ना, ना ना कुछ नहीं तू बता क्या कर रही है या क्या कर रहा है ना। वैसे हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक अनसेंट मैसेज है, कौन सा रहन दो, कई बार तुम क्लियर कर देते हो ना, मैं भी नहीं बोल रहा। अभी फिलहाल ये गाना है जिसको मैं बिल्कुल क्लियर नहीं करने वाला, बिल्कुल स्किप नहीं करने वाला, ये चलाने वाला हूँ ताकि आपका दिल भी सुन के कहेगा जियो बिंदास।

विद्या बालन का एक डायलॉग जिसने रेडियो को अलग ही लेवल पे ले गया था, मतलब रेडियो की पहचान ही गुड मॉर्निंग मुंबई इस नाम से होनी स्टार्ट हो गई थी। नहीं अच्छा, तुम वही हो आरजे, आरजे वही होता ना, गुड मॉर्निंग मुंबई 106.3 रेडियो ऑलिप्स आपके दिल की आवाज। मैं हूँ आरजे आकाश मिड नाइट लाउंज में। इसलिए मैं मानता हूँ कि मूवीज में हमेशा एक अच्छा मैसेज होना चाहिए, एक अच्छी तरह से दिखानी चाहिए ताकि लोगों को मिसकंसेप्शंस ना हो, राइट। वैसे हम रेडियो पे यार ऐसा अपनी मर्जी होती है कि आप किस तरह से अपनी ऑडियंस को, अपने लवर्स को, अपने लिसनर्स को किस तरह से वेलकम करते हो। हालांकि मैं कभी गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग नहीं करता, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। एनीवे, सिनेमा ना सिर्फ कहानी नहीं होती भाई, महसूस करने की चीज़ होती है। इसलिए लोगों ने महसूस किया और रेडियो को उस तरह से समझा। लेकिन रेडियो से जुड़ा एक सवाल भी है मेरे पास आपके लिए, यानी कि आज के ट्रिविया का सवाल है, बताइए कौन सी फिल्म में शाहरुख खान ने एक ऐसा इंसान का रोल किया जो रेडियो पर लव स्टोरी सुनाता है। जी जल्दी से मुझे बताइए, आपको भी पता होना चाहिए या फिर नहीं पता तो आज हम बताएंगे जनाब कि हमारे तरह शाहरुख खान जी ने भी कब लव स्टोरी सुनाई है। तो इंस्टा पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो कर जाइए और इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, सबसे पहले जिसका सही जवाब आएगा उसको बढ़िया सा गाना मैं डेडिकेट करूंगा। जियो बिंदास।

क्या बात है करण, दिल से आंसर दिया तुमने और दिल से। जी मूवी का नाम भी दिल से है। 1998 की मूवी है जब शाहरुख खान ने रेडियो स्टेशन पर काम करा था। जी हाँ, ये एक्चुअली जॉब नहीं करी थी, एक फिल्म की शूट थी। शाहरुख खान ने एक रोल किया था जिसमें रेडियो पर वो लव स्टोरी सुनाया करते थे। दिल से मूवी है 1998, करण ने राइट आंसर दिया है। रेडियो स्टेशन पर काम करता है और हर स्टोरी के पीछे एक दर्द, एक जुनून था उनकी। जब आपने अगर वो मूवी देखी हो तो SRK जो भी आपको स्टोरी सुनाते हैं उस रेडियो पे, तो एक अलग ही स्टोरी, एक अलग ही दर्द होता था। नहीं, वो ऐसा दर्द जो आप अब जाके फील कर रहे हैं ना इस एज में आने के बाद। वैसे कभी कभी ना रेडियो के माइक के उस पार भी कोई अपनी कहानी छुपा के बैठा है, कोई ना कोई छुपा के रखता है। कभी आपने RJ के दिल का हाल पूछा? पूछ के तो देखो यार, मैसेज करो तो सही, तुम ही रह गए, बाकी सबके मैसेज आ गए। इंस्टा पे जाओ, रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो कर जाओ और इनबॉक्स में हाय RJ आकाश और पूछ जाओ यार क्या आकाश कुछ कहना चाहते हो, ऐसे लिखना। देखो मैं फिर बताता हूँ सामने से। आ रहा हूँ वापस, जियो बिंदास।

ये है मिडनाइट लाउंज कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

अच्छा मुझसे कोई पूछ रहा था यार, मतलब लव मैरिज बढ़िया होती है, अरेंज मैरिज बढ़िया होती है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछा करते हैं लोग मुझसे। उसके बाद किसी ने मुझसे पूछा कि आकाश मुझे अच्छा ये बता कि वन साइड लव वालों का बड़ा सही है यार, उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, अब उन्हें कैसे समझाऊं जनाब सबसे ज़्यादा पेनफुली वन साइड लव होता है। नहीं 106.3 रेडियो ऑलिव्स है आपकी दिल की आवाज़, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। वैसे कुछ रिश्तों का ना नाम नहीं होता पर एहसास सबसे गहरा होता है, एंड आई बिलीव कि ये वन साइड लव वालों के साथ होता है। नहीं कभी किसी से बात ना हो पर कनेक्शन उतना ही मजबूत लगता है। नहीं प्यार जरूरी नहीं है हर बार मिल जाए, कभी कभी ना बस महसूस कर लेना ही काफ़ी होता है, और प्यार का डेफिनेशन ही ये महसूस करना। अगर आप महसूस नहीं कर रहे, दिखावा कर रहे हैं, तो वो प्यार ही नहीं है मेरी जान, है ना। जैसे हमारा और आपका, हम गाना देखो ना, मैं यहाँ से गाना प्ले करूँगा, देखो जस्ट अभी लाइब्रेरी से निकाला है, अभी इसे प्ले करूँगा आप फील करोगे, दैट इज कॉल्ड लव, है ना। तो बस इस लव को मेरी तरफ से सुनते हैं, शिखा की तरफ से गाना चलवा रहा हूँ। तो शिखा जी ये आपके लिए और साथ में आपके लिए जो आप सुन रहे हो, बस वॉल्यूम बढ़ा लो ताकि जो वाइब्स हैं अपने आप हाई हो जाए, है ना। साथ में कहेंगे जी ओ बिंदास।

अच्छा, कुछ लोग रात में चॉकलेट्स खा के स्ट्रेस कम करते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस खा के चॉकलेट। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। मिडनाइट लाउंज में दो टाइप के लोग तो एग्जिस्ट करते हैं यार। रात को जब टेंशन होती है ना, या तो खूब खाएंगे, और जब जिनको भी ये बेचारों को बड़ी टेंशन, अपना खून सुखावड़ लेंगे, है ना, मतलब खाना तो खाएंगे नहीं और खून भी अपना पूरा अच्छे से सुखा लेंगे। नहीं भाई, हम तो वो हैं जो इंसान मस्त खाते पीते गाना सुनते, टेंशन होती है तो और घूमने निकल जाते हैं कहीं पे। एंड दिस इज द बेस्ट थेरेपी आई बिलीव, कहीं घूमने निकल जाओ। नहीं, बट स्टिल मेरा आपसे सवाल था कि रात की 11 बजे आपका कंफर्ट फूड क्या है? अगर क्रेविंग होती है तो किस चीज को सबसे पहले गले लगाते हो, मुंह लगाते हो यार? किस चीज को कहते हो भाई सबसे पहले कि यही खाना है आज? तो क्रेविंग होती है और फटाफट अपना फूड वाला जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, फटाफट खाना ऑर्डर करते हैं। मतलब कौन सी चीज है वो, जल्दी से मुझे नाम बताओ, या फिर फ्रिज में अवेलेबल है तो जल्दी से नाम दसो यार। इंस्टा पे जाओ, रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आपका जवाब। फिलहाल मेरा जवाब कि आप जियो बिंदास।

देखो, मैंने अक्सर ना कई बार ये सवाल पूछा होगा कि लोग चांद को क्यों देखते हैं, चांद की फोटोज क्यों लेते हैं। जवाब पता है क्या है आखिरकार उसका, कि मैं इधर से देख रहा हूँ वो उधर से देख रही होगी। एक ही चांद को एटलीस्ट हम दोनों एक साथ देख रहे होंगे, क्योंकि कभी एक साथ बैठ के देखा करते थे। जो इंसान ना कभी किसी को याद करता है ना, वो उस चीज को बहुत याद करता है जो शायद आज उसके पास भी और अपने पास भी है। अब बचा कुचा ये चांद ही है, सूरज से तो नजर मिला नहीं पाएंगे, तो चांद ही सही। वैसे रात की चांदनी सारी यादों को ताजा कर देती है, बस याद करने और फील करने की देवी है। इसलिए जाता जाता बढ़िया से गाने लगा के जा रहा हूँ मेरी जान। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। और फिलहाल सनाब अफसोस से समय अब यहीं तक, यानी कि स्टूडियो की क्लॉक के अनुसार अब मुझे आपसे गुड बाय टाटा बाय करना होगा। लेकिन जाते जाते बढ़िया से गाने लगा के जा रहा हूँ, और जाते जाते अगेन मुझसे बातें करने का तरीका बता के जा रहा हूँ। इंस्टा पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो कर जाइए, इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और अपने दिल की बात कह जाइए। फिर देखिए दिल की बात दिल की आवाज़ के साथ करके एक अलग सुकून मिलेगा, है ना, आजमा के देखिए, मस्त अच्छा लगेगा। जा रहा हूँ जी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा दिल पे हाथ रख के कहते रहिए जियो बिंदास, गुड बाय, गुड नाइट।

तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3 FM.

Radio Olive, your happiness frequency.

Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जान